एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर वर्ण जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमित तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत छुटत प्रवाह अमेय अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करहे मन मजन पुब जिन्हों सेवा करिया तिन भउ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब काले ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे जाओ तव प्रेम खेलन का चाओ सिर तार तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जै सिर दीजै कान ना कीजै कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो तहर कै द्वार मत हर पूछै कौन है परा हमारे बार मुर्दा हुए मुरीद न गली होवना साबर सिदक सहीद परम भउ खोवना एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरनाई अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दे नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातिसा
माल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहां दा।

राम नाम सब अर्थ गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नाव जीवन बिरथ रहा बिन गुर मूड़ पाए है मन मुख ते मोह माया नित फाफा।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखया रंग कूड़ावेया दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावने मेल साधु पीवन हार वन तेण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मे

सावनिका सजका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आए आयत देव ते उठत हे बिरद की पैर पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबल

रंग प्रंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वास्ते।

आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। गेर गेर फतहे बिरध की पैर पंथ की जीत। श्री

रंग प्रंग नेकण जापन करतवा जिया अंदर जियो सब किस जाने ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे घर आनंद धाई तुद कर मान

शरण परे की राख शर्मा, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राख शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कब्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिया, सब बैर इनको आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे बरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख लियो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्म अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनाया, देव दैत जक्षन उपजाया। आदंति कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतरन को पलमो बध कियो। कट कट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट की पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब कर्ख करत हो कब हों, तुम मैं मिलत दे तर सब हों। जीते बदन सृष्ट सब तार, आपे अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद नील नाद सांब। ताका मूड चारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ता
ਆਖੁ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਂਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਵਿਧ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਪੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਜੰਭਵ। ਅਵਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠੋ ਤੁਤ ਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਜੇ ਅਸ ਭਜਤ ਵਿਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ। ਰਸ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹੋ। ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸ ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜੰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇਰਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਈ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ, ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ।
गोविंद दास तुहार, राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां। शब्द तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार यहो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिवत सला तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जनिशा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहा, जिस दियां हे वडियाइया। कह नानक सुनहो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर से, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे।
ਮੁੰਦਾਵੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰੇ।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो। सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे है। कर नौ निधि आवै ताय। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां। चौहां साहिबजादियां। चालियां मुकतियां। हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। दिग चलाई तिग वाही देख के अण डिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते। बंद बंद कटाए। खूपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नाहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निवाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के

वाहे गुरु चित आवी, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरियायत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी साहा।

दान बबेक दान विसाहु दान प्रूसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल

अबरख दास पाठ की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख सफारी कर आज। फन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सो दामा अपदा ते राखिया, गनका पढ़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए, रखो दास पाठ की लाज। गुर पार सहम लो, मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहया राम। काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास गिरास विसारिय। अदृष्ट गोचर पकड़िया गुर शब्दी, हो सतगुर कै बलिहारिय। सतगुर आगै सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे पावै। आपी दया करहु प्रभ दाते, नानक अंक समावै। सतगुर आगै सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे पावै। आपी दया करहु प्रभ दाते, नानक अंक समावै। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों झटिय। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दाविसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दाविसाहो।
ਸਤਨਾਮ।

पानी पखा पीसौ संत आगै, गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारै, यह विश्राम निद पाई।

ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिनस जाए परमाई। अनंद रूप रवियो सब मदे, जत कत पेखो जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निद, पतित पावन गोसा

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज दर्शन परसै, गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद रिठे सच्चे पात सहा, मल जन्म जन्म दी। सजन सच्चा पात साहो सिर सहांद, जिस पास बैठिया सोही सबना दावे। सजन सच्चा पात साहो सिर सहांद, जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाह।

दर्शन पेटत होत निहाला, हर का नाम विचार। जन्म जन्म के दुख निवारे, सुख मन साधारे। दर्शन भेटत होत निहाला, हर

एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की।

ओटों की ओट ने आसरों के आसरा धन धन श्री गुरु रामदास जी ओ महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत घर चौथा।

0: सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लोक, सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर, सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तो दाखे लख करोड़, सच्चे सब तान, सच्चे सब जोड़, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सुपच निकच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच न्याओ, वड्डी वड्याई जा नेचल थाओ, वड्डी वड्याई जाने आलाओ, वड्डी वड्याई बूझे सब पाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा आपे आप, नानक कार ना कथनी जाए, कीता करना सरब रजाए महला दूजा।
0: इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, एक ना हुक्म समाए लए, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना पाने कट ले, एक ना माया विच निवास, एक पी आख ना जापही जे किसे आने रास, नान

पौड़ी सेब की थी संतोख जिन सचो सच ते आया उन्हें मंद पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी से अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सचता तिन्हें सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानवी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यारजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हमें चकना चाक माला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एनिस कहरे मोन विगोता क्यों जागे गुर बिन सूता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना मैं किछ थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो

पौड़ी दान महंडा तलीका जे मिला तमस्तक लाई है, छूड़ा लालच छड़ी है, हो एक मन अलख त्याई है, फल ते वे हो पाई है, जे वे ही कार कमाई है, जे हो वह पूर्व लिखिया था धूड़ ना दी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है।

पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो उम्मी साध न मारिए। जेहा घाले घालना देवे हो ना उपचारिए। ऐसी कला ना खेड़िए जित दरगे गया हारिए। पड़िया ते उम्मिया विचार गया विचारिए। मुँह चले सो गए मारिए।

0: हरखवन अनंतरु निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी, जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी। तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो। तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो।
1: सत सत हर सत, सत सते सत फड़िया, दूसर आनन अवर पुरख पौरातन सुनिया। अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जिह रसन चाख्यो तेह जन तृप्त अगाए। जै ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत तै प्यार, हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार।
2: सच सबादे बान सच सच्चे पै तरियो, सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो, सच सिरजो संसार आप अपुल न पुलो। रतन नाम अपार के मनो पवे मुल्लो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए। हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जोन नाए।
3: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन विदुस्त करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम न परिए। ब्रह्मादक सनकाद से गुणंत न पाए, अगो ग्यो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए। जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते।
4: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना, मिले दान संतरेन जेलक पौजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाओ भगत तेह मन ठहरावे। बलियो चराक अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
5: जाम गुरु होए वल तन्हे क्या गर्व दिजै, जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या खिजै। जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच है कार। जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास भट बेनत कह, जो गुरु नाम रिद मह तरै सो जन्म मरण दोहथे रह।
6: समरथ गुरु सिर हथ तरयो ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੈ ਸੁਤ ਪਾਂਡਰਿਓ। ਪੰਨ ਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤ ਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ।

जाको मन ध्यान तारे फेरत सकल जोग, कबहु को कहु पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको, सेव मन गह ना तो जात का बलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट भेख किए फेरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए।

0: सगर श्रेष्ठ लगे बेतरो।
1: ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तन गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देव दानव, इक तिल ताको मर्म न पावत, प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग

हम सर दीन दयाल ना तुम सर। अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन मान, जान को पूरन दीजे। हम सर दीन दयाल ना तुम सर। अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन मान, जान को पूरन दीजे। हम बाल बाल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल। रहाओ बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीव, चेर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म

जीव चेर पयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जान को।

0: जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी सतगुरा संतोखा धर्म गैरथवा त्रेत रत जतै का जोर गैरथवा द्वापर रत तपै का सता गैरथवा कल जुग रथ गन का
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावे ऋग कहे रहया भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राचित जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी लय आया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं बेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुर्क ठाणी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सत

पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समाधं मुख चूट बिपुखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलकले लाटंग दोय तोती।

पौड़े कपड़ रूप सुहावना छर दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म के मन भाव दे रह पीड़े अगे जावना नंगा दूज चालिया तां दिसै खरा डरावना कर औगण।

0: सतवट योजनेऊ जी का ऐतां पांडे कट ना यो टुटे ना मन लगे ना यो जले ना जाए तन सो मान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मुल नाया मैं चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओम वो चढ़ पाया
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पैनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहों कतिये बामण वटे आए को

पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म नाए सी हुक्म न हवे प्रमाण था खसमे का मैल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी।